0: गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाही 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: नमस्ते
2: सर, मैं बोल रहा हूँ सत्यनारायण गंगापुर सिटी से।
1: हाँ जी सर।
2: तो मैं कह रहा हूँ गोवर्धन जी की आरती सुना सकते हो?
1: कौन से की सर?
2: गोवर्धन जी की आरती।
1: वो तो सुना देंगे आपको।

0: नाम क्या है कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाने के बोले मैं नाम जनपायल।

0: जी नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका?
1: हसीन।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? सिंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हम दिल दे चुके थे।

0: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते, कलयुग चौधरी अर्ज कर रहा हूँ आप जी से।
0: हाँ जी सर, नाम क्या सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: चौधरी अर्ज कर रहा हूँ।
0: हाँ सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जल्दी सुना दे।
0: हाँ जी बताइए।
1: सांसों से नहीं, कदमों से नहीं।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना।
2: सुनते रहिए दिल से दिल 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
3: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:23 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: नमस्कार जी मैडम, नमस्कार।
1: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
0: मैं बोल रहा हूँ रतन लाल चढ़ाया ही क्या, पूजा कर आई?
1: हाँ सर, पूजा कर आई, आज जल्दी कर आई सर की क्या ड्यूटी है आज बाहर लिए।
0: अच्छा अच्छा, बाहर गए थी के?
1: हाँ सर, माधेपुर ड्यूटी है सर की आज।
0: आज तो आप ही सारे शहर में आपका कोई नहीं, कोई नहीं।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी।

खूबसूरत है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

0: आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसे भी हो तुम, ऐसे भी हो, ऐसे भी हो।

सुनो एक बात सुनाओ, झूठ है या सच है ये तुम जानो, अरे झूठ है।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शहनाज।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: संजय कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: दिल मेरे तू दीवाना है।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राजा मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: केलम स्कूल से, केलम के स्कूल से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मानसून शर्मा के।
1: वो कैसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: हेलो,
1: नमस्ते दीदी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: लतीफ अहमद रैना, कश्मीर सोनामर्ग से। आपका नेम शो था?
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आज मुझे सुना ये उदित नारे की आवाज में देशभर की गाना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर राजस्थान में।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है निगाहें और गीत के बोल है सावन के झूलों ने मुझको बुलाया।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।
0: थैंक यू।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलुखेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मेरे देश में पवन चले पुरवाई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: धन्यवाद मेरे बहन।
0: यू वेलकम।

0: एक सेकंड भैया। हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: योगेश जावड़े।
1: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
0: छत्तीसगढ़।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: कोई भी दे सकती।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: मेरा जी DS रेडियो राजस्थान गंगापुर जी।
3: जी सर, गुड मॉर्निंग सर, सत श्री अकाल।
2: सत श्री अकाल बेटा, माई डियर डॉक्टर बेटा, सत श्री अकाल भाई पालक बेटा, सत श्री अकाल भाई, जमदे रहो पाते रहो, बाबा नाल सुनो सारे परिवार नु तंदुरुस्ती बख्शे भाई।
3: हां जी सर, नाम क्या है आपका?
2: नाम बेटा पिंड मौड़कुर डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तू भाई जी जीत मट्टू बोलना बेटा जी।
3: हां जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
2: बेटा जी अपने बड़े सर मीना जी कृषि मीना जी को मेरी सत श्री अकाल बुला देना बेटा।
3: हां जी सर, मैं बोल दूंगी उनसे सत श्री अकाल।
2: बेटा आज मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे तुम्हारे विनती करता हूँ।
3: हाँ जी।
2: आज मैं मेरे चार दोस्तों के नाम ले दूँ 2000 को?
3: हाँ जी।
2: ओ वैसे बेटा बात है इससे यार, मेरे उगे लोग गए कि ना पंजाबी लोग गए कि जस्सी आ।
3: हाँ जी।
2: ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਮੁੰਡਾ ਬੋਏ ਬੇਟਾ।
3: ਹਾਂਜੀ।
2: ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ।
3: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?
2: ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਦਾ ਬੇਟਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ।
3: ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲੋ ਨਾ।
2: ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ 43 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ।
3: हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, हमारी तरफ से उसकी बहुत लंबी उम्र हो।
2: हाँ बेटा, बेटा ये ना गुरबाणी विच लिखा जो वाहेगुरु होता है अल्लाह गॉड होता है, ओदे कर देर जरूर होती है पर अंधेर नहीं होता बेटा।
3: हाँ जी सर।
2: हाँ बेटा, मेरे मान योग बड़े भाई है जोगिंदर सिंह तगड़ साहब चेयरमैन जी भी साडे है, ते प्रिंसीपल अमरजीत सिंह बाला जी, ते जी अपने स्वामी धर्मपाल जी कथा कीर्तन करते हैं जी।
3: धन्यवाद
2: बेटा, तुमने बहुत टाइम दिया बेटा, उन्होंने खुशी जन्म दिन गीत सुना दो। हम तो अगर बच्चे होते राम हमारा तो पपलू डपलू खाने के मिलते।
3: गाना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ठीक है बेटा, बाबा जी का रखे।

0: भगवान को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: हेलो।
2: हाँ जी मैम, क्या आपका?
1: हमारा पीस मीना।
2: कहाँ से बात कर रहे?
1: केलम केरिन शो से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दांदा, दांदा नोदिया वाला।
2: रांझा
1: कब तक चलेगा मैम?
2: टाइम लगेगा सर, रिकॉर्डिंग नहीं है।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: सर मेरा नाम नमस्ते एफएम बोल रहे हो?
1: हाँ जी
0: जी। हमारे एक गाना आप सुना सकते हो?
1: जी नाम क्या है आपका?
0: जी मेरा नाम रवि बोल रहा है गंगापुर सिटी से।
1: हाँ जी कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे।
1: ओ सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: योगेश ठाकुर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम रूट।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हाँ दीदी नमस्ते।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: माँ तुझे सलाम।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: नाम राकेश है। गंगापुर
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सिटी से। गाना
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: है मैं बोला बोला पर्वत का पुरानी मेला की।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: पढ़ाई लिखाई में तो ध्यान था, खेती बाड़ी पर ध्यान नहीं।

0: हेलो, हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: तुम्हें ढूंढती है मेरी पागल दुनिया।
0: कौन सा?
1: तुम्हें ढूंढती है मेरी पागल दुनिया।

0: इसमें से हटाना पड़ेगा।
1: हेलो मैम, नमस्ते।
2: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: पहले तो आपको आजादी के 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम।
2: धन्यवाद सर, आपको भी हमारे डीए साइंस एकेडमी की परिवार की तरफ से आपको भी 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: जी मैम, मैं उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
2: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: क्या बोलते हैं, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का ये चमन।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।

0: मेरी बात तो सुनो।
1: मैं कुछ नहीं सुनना, हमारी मांगे पूरी करो।

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका? हेलो,
1: नाम क्या है आपका?
0: पूजा
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन
0: सरला से
1: सा गाना सुनना
0: सारेगामापा
1: चाहोगे?
0: डिजिटल ऑडियो प्लेयर। आज की रात
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कोमल
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरी चूना रोड उड़ जाए।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: सुलेखा।
1: कहाँ से बात कर
0: रहे हो?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: बोले चूड़ियाँ बोले पहना।
1: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: फोन दौड़ेगा। हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: दिलराज।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: हाँ,
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दिल दे बेटी एक छोरी ना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करीब है।

0: हेलो सर। हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: लवियाश गोयल।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं? हम जयपुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हम वो

0: हेलो।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
0: पेखान लोग मधी की वजह से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तुझ पे करके भरोसा, हमने खाया है धोखा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपके?
0: अंकुश।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: डार्लिंग सॉन्ग।
1: ओके, तो सुना रहे आपकी फरमाइश करिएगा।

0: का?
1: मनिका कुमारी।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे कॉलोनी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: चोटी के नीचे है परांदा।
2: ओके।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 12:05 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो DS पर। दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है राधा शर्मा जी की। राधा शर्मा जी नवे कॉल किया है गंगापुर सिटी से। सुनते इनकी फरमाइश परिएगा 99.6 रेडियो DS पर।

0: कुलदीप
1: मान का।
0: हाँ जी हाँ जी।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: ओके बने, ओके।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी मैम, क्या अच्छा
1: हेमंत
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सिद्धू मूसेवाले का।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना।

0: नाम क्या है आपका?
1: विजय।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: संगम की।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मजबूर।
0: मजबूर।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या एक्स्ट्रा? कहाँ
0: मेरा नाम सौर्य शर्मा, मैं
1: से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन से गाने सुनना चाहोगे?
0: मैं गाना है वो कौन सा है, माँ से है माटी, माँ से है माथा, योद्धा पिक्चर का गाना है।
1: ओके, तो सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करें।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:20 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों मिलते हैं 1 बजे नए तरह ने कार्यक्रम के साथ, सुनते रहे हो आपके मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत सॉन्ग।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहीं तरह 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: तू बच के रह।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग।
3: के अंदर मीराबाई, त्याग में दासी पन्नादाई और बलिदान में रानी पद्मिनी, जिनको आप रानी पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 16,000 दासियों के साथ मेवाड़ की आन बान और शान बचाने के लिए जौहर कुंड में कूदकर खुद को जिंदा जला लिया था और सती हो गई थी। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा किला है, जिसमें 113 मंदिर, 84 पानी के कुंड और कई ऐतिहासिक इमारतें भी हैं। चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास, इसके बनावट, संस्कृति और कला इतनी अद्भुत होने की वजह से कहा जाता है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़िया। ये किला राजस्थान की राजधानी जयपुर से 310 किलोमीटर और उदयपुर से 110 किलोमीटर दूर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ शहर में स्थित है। 700 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई इस किले की बाउंड्री वॉल कुल मिला के 13 किलोमीटर की है। ये किला तीन भागों में बटा हुआ है। पहले भाग में यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं, जिनकी आबादी लगभग 5,000 की है। बीच के हिस्से में किला बना हुआ है और तीसरा भाग जंगल का इलाका है, जो कि रानी पद्मिनी के महल के आगे पड़ता है और 5 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ डियर पार्क है। हम जिस तरफ से अभी किले में जा रहे हैं, ये किले का पिछला भाग है। सन 1433 यानी कि 1433 में महाराणा कुंभा ने इस किले में 7 दरवाजे बनवाए थे और मेन गेट का नाम था सूरज पोल। सूरज पोल वही दरवाजा है जहां से दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी को पाने के लिए इस किले पर हमला कर दिया था। आप चाहें तो इस किले को अपनी गाड़ी या बाइक से भी घूम सकते हैं, या फिर आप इसको घूमने के लिए ऑटो रिक्शा भी हायर कर सकते हैं। यहाँ का टिकट प्राइस 40 रुपए का है और आपका एक ही टिकट किले के सारे भागों में काम आ जाएगा।
4: यहाँ पे इस तरह की पार्किंग वगैरह दिखेगी आपको, और पार्किंग में गाड़ी लगानी पड़ेगी अपनी, या फिर ऑटो वगैरह जिससे भी आप घूम रहे हैं उसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फिर आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट के लिए जाना पड़ेगा। काफी बड़ा किला है ये, तो आप ऐसा नहीं कि बाकी किलों की तरह इसको पैदल घूम सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हर पॉइंट पे पार्किंग मिलेगी, वहाँ पे आप गाड़ी लगाओ अपनी और पॉइंट को घूमो पूरा। तो चलते हैं, फर्स्ट पॉइंट घूम के आते हैं।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM
2: मेवाड़। यहाँ हर बीट में है सिटी पैलेस का स्वैग।
3: यहाँ पर आते हैं और रानी पद्मिनी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और पूजा अर्चना करवाते हैं। ये जो सामने वाला गेट आप देख पा रहे हैं, ये है पूर्वी जौहर गेट, और वो उस तरफ वाला जो सती मंदिर के पीछे में है, वो है उत्तरी जौहर गेट। तो जैसा कि मैंने बताया कि उस जमाने में यहाँ गार्डन नहीं बल्कि एक गहरा कुंड हुआ करता था। उस समय इस कुंड के अंदर आग जला करती थी, जिसमें चंदन, कपास, तेल, घी वगैरह डाला जाता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है सती मंदिर। तो नीचे आग जलती थी, उस समय की औरतें अपने पति के मृत्यु के बाद ऊपर से छलांग मार के नीचे आग में कूदकर सती हो जाया करती थी। इसी कुंड में कूदकर रानी पद्मिनी ने मेवाड़ की आन बान और शान को बचाने के लिए 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अपने आप को जिंदा आग में जला डाला था और वो यहाँ पर सती हो गई थी। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं, ये है विजय स्तंभ यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री। जब राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात दोनों स्टेट्स को एक साथ हराया था, यानी कि जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह को हराया था, तब उन्होंने विजय के उपलक्ष में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस टावर को बनाने में 10 साल लगे थे और ये 1448 से 1458 यानी कि 1448 से 1458 के बीच में बनकर तैयार हुआ था। उस समय में इस स्तंभ को बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था। ये 9 मंजिल इमारत है। इस टावर की ऊंचाई 122 फीट की है और इसमें ऊपर जाने के लिए 157 यानी कि 157 सीढ़ियां दी गई हैं। अभी लगभग 2 साल से कोविड के चलते ऊपर जाने का रास्ता सरकार ने बंद किया हुआ है। इस विजय स्तंभ के बारे में एक खास बात मैं आपको बता देता हूँ, जो शायद आपने कहीं नहीं सुनी होगी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस विजय स्तंभ के महत्व की वजह से राजस्थान पुलिस के लोगों को अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसमें जो सिंबल लगा हुआ है वो इसी विजय स्तंभ का है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है गौमुख कुंड। ऐसे इस किले में छोटे और बड़े मिलाकर 84 यानी कि 84 तालाब बने हुए हैं। इस कुंड में रानी पद्मिनी नहाने के लिए आया करती थी। इसको गौमुख कुंड इसलिए कहते हैं क्योंकि नीचे में जो मंदिर आप देख रहे हैं, वहाँ पर एक शिवलिंग है। इसी शिवलिंग के ऊपर गाय के मुंह के आकार के जैसा एक पत्थर है, जहाँ से पानी इस कुंड में गिरता है। ये पानी सर्दियों में गर्म आता है और गर्मियों में ठंडा। और ऐसा बोला जाता है कि किसी को नहीं पता कि ये पानी दरअसल आता कहाँ से है। यहाँ पर रानी पद्मिनी के दो पैलेस बने हुए हैं, एक है समर पैलेस जो कि पानी के बीच में बना हुआ है और दूसरा है विंटर पैलेस जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। इस महल में आपको चारों तरफ गार्डन दिखाई देगा, तो गवर्नमेंट ने इसको बेहतर रूप देने के लिए यहाँ पर गार्डन बना दिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर हमला कर दिया था तब ये पूरा महल उसने खंडित करवा दिया था। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। ये जो कमरा आप देख रहे हैं ये वही रूम है जिसमें खिलजी को लाया गया था और रानी पद्मिनी का चेहरा उसको दिखाया गया था। ये जो पानी के बीच में आप महल देख रहे हैं ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस हुआ करता था जिसे जल महल भी कहा जाता है। उस जमाने में एसी पंखे कूलर वगैरह तो होते नहीं थे, तो जिससे कि ये महल गर्मियों के समय में

0: किले पर धावा बोल दिया था और तब रानी यहाँ से सुरंग के जरिए निकल गई थी और 16,000 दासियों के साथ जौहर कुंड में कूद कर जिंदा जलकर वो यहाँ पर सती हो गई थी। ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये है कुंभा महल। यहाँ आंगन में बैठकर राणा कुंभा सुबह उठकर सूर्य देवता की पूजा किया करते थे। यहाँ पर जो पिलर्स आप देख रहे हैं वहाँ पर उनके घोड़े बांधे जाते थे। महाराणा कुंभा साल 1433 यानी कि 1433 से लेकर 1468 यानी कि 1468 तक मेवाड़ के राजा रहे थे। हमारे भारत देश में जितने भी राजा हुए हैं उनमें महाराणा कुंभा का बहुत ही ऊंचा स्थान है। मात्र 35 वर्ष की उम्र में राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़, कुंबलगढ़, अचलगढ़ समेत कुल मिलाकर 32 किलों का निर्माण करवा दिया था। महाराणा कुंभा अपने पिता राणा मोकल की मृत्यु के बाद मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे सन 1437 यानी कि 14।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।
2: दोस्तों बात तो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 3 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:27 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो DS पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:03 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त हर्जे पलक। दोस्तों अभी आपने थोड़ी ही देर में मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:30 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
3: पलक दीदी, शादर सा प्रेम प्यार हर नमस्कार।
4: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
3: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, गोवर्धन रोड मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं?
4: सर मैं ठीक, और आप कैसे हो?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है। रेडियो टेंशन है,
4: आशिकों
3: के दिल की धड़कन है। बहुत सुंदर प्यारा गीत आप सुन रहे हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: नागपुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: अच्छा।
1: कौन सा? हेलो
2: हेलो भाई।

0: तुलसीराम मीना ग्राम पिल्लू खेड़ा से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: फिल्म का नाम है बटवारा और गाने के बोल है तेरी वास तेरे सजना नैन मेरे जागे।
1: ओके सर, गाना रिपीट में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते पालक जी, कैसी हैं आप?
1: सर ठीक है, और आप कैसे हो?
0: बस मैं भवानी मैया जी के पास मस्त हैं।
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम विमल, उनकी विमल मामा, मऊ कला गंगापुर से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: सावन का महीना चल रहा है तो सावन का महीना पवन करे तो।
1: कौन सा सर? थोड़ा आवाज कट रही है गाने की, बोल नहीं आए समझ।
0: सावन का महीना पवन करे।

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: कहाँ से बात करो?
3: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: देश रंगीला रंगीला मेरा।
2: ओके, मैंने सुना रही आपकी फरमाइश।

0: गंगापुर सिटी श्री राम। हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राहुल मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी श्री राम हॉस्टल से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?

0: क्या है आपका?
1: साबिर बोल रहा हूँ, दशहरा मैदान से।
0: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: वो है कुछ सुना और भी आप।

0: तू प्यार करने वाले नू
1: कदे कोई वक्त नहीं कर सकता,
0: जब तक
1: वो आप ना चाहो।

0: नानक दी गद्दी दे वारिस हुण तुसी बचा सकदे हो सानू। मेहर कर मेरे दातिया।
1: बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास।
2: मुल्क औरंगजेब दे जुल्मां दी जकड़ विच हर एक धर्म दे लोकी कुटन महसूस कर रहे।
3: मैं धर्म युद्ध करांगा, इस मुल्क नू दारुल हराब तो दारुल इस्लाम बनावांगा। मेरी हर एक चाहत इस मुल्क दा कानून होवेगी।
4: काफिरां दे कानून अग ला दियो। मरिया होया नू जलाईदा नहीं, कलमा पढ़ के दफन करीदा।

शमा बनकर जल रहे हैं हमारी धड़कनों में तुम्हारी मोहब्बत के परवाने। तुम जब हमें उन नजरों से देखते हो, दिल की कलम से हम लिखने लग जाते हैं आशिकी के कई अफसाने।

दौलत भी शौहरत भी अज सब कुछ कोड़ मेरे अखां सामे तू नहीं है हो दिल विच हौल मेरे अज 14 सालां बाद मुड़िया हां उन्हां रावां ते देख के उही हवावां क्यों अज वधियां सावां ने काश जे मिल जे तू ता जिंदगी सफल हो जावे तू गीत मेरे दा कल्ला कल्ला लफ्ज़ हो जावे।

0: जिस दिन टूटे तेरा परिवार शायद छट के चल गया,
1: तो कुछ साल बाद में तेनू एक हाथ ले गया,
0: ते उसने रोज पढ़ दी गई
1: पढ़ता सी तो एक दिन
0: हर रोज हंस हुए तू मेरी वेट कर ते मैंने वेख वेख तेरी छोटी जी स्माइल सब कुछ पता लग जाए।
1: मैं तो पता भी नहीं सी कि इनी छोटी जी उम्र च इतना प्यार हो सकता,
0: मैंने पता सी तो आएगा ते मैं तेनू दस सकां कि मैं तेनू किन्ना प्यार करता।

0: हाँ जी, किवें लगे तुहानू इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नू भी जरूर सुनियो ते मेरे नवे नवे गाने सुनने दे लई गीत एम पी थ्री दा चैनल सबसक्राइब करो। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
2: नमस्ते।

0: अक्खा मीच, अक्खा मीच।
1: की होया?
0: मंगला जो भी मंगना मिल जूगा।
1: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: एक चीज दिखावा
1: मेरे लिए?
0: हाँ, चल अखा बंद कर। ए मैं दूसरी औरत दे अपनी जिंदगी चलाया।
1: दूसरी?
0: हाँ
1: ते पहली कौन सी?
0: मेरी बेबे।

0: हर 6 महीने बाद बूटे बदलने वाला जब करना पऊ आपां नूं।
1: वो तो करना पऊगा जी, कुछ हुंदे सदा बहार, जिहड़े खड़ गए तो खड़ गए, कुछ मौसम तरह बदल जांदे आ।

दुआ लेंगे। मुझे लगता है कि एवं बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे। मुझे छोड़ के जाने वाले जा, छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या लेंगे।